0: साहू, मोहित राम साहू, लोकेश साहू, रामकिशन साहू और दुलीचंद साहू जी का, वो लिखते हैं,
1: प्रिय उद्घोषक जी मन ला जय जोहार पहुँचे। आपके उमंग एनसीईआरटी कार्यक्रम ला ध्यान लगा के सुनथन। बहुत बहुत धन्यवाद देवत हूँ।
0: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
1: और अगला संदेश हमें मिला है ऊपर कोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अब्बान अब्बासी जी का।
0: और इसके साथ साथ ही संदेश मिला है गांव गणेश धाम परसुली जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलऊ दास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी।
1: और छत्तीसगढ़ मदनपुर कवर्धा से श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू, राहुल साहू के साथ साथ शिवम साहू लिखते हैं, सादर नमस्कार।
0: मैं उमंग कार्यक्रम का नियमित श्रोता हूँ। इस कार्यक्रम से हमें मनोरंजन तो होता ही है और हमें ज्ञान और सीख व प्रेरणा भी मिलती है। और सफल प्रस्तुति के लिए उमंग परिवार और अजीत जी और विमलेश जी को हार्दिक बधाई।
1: अकोला महाराष्ट्र से डॉक्टर संतोष कायंदे, डॉक्टर अशोक इंगले, डॉक्टर संतोष वावगे और श्री संजय देशमुख लिखते हैं,
0: CIET द्वारा प्रस्तुत उमंग कार्यक्रम हमें बहुत अच्छा लगता है।
1: जी
0: कल उमंग कार्यक्रम में दृढ़ संकल्प की धनी अरुणिमा सिन्हा के बारे में जानकारी दी गई, जो हमें बहुत अच्छी लगी। हम लोग अकोट जिला अकोला में स्थित श्री शिवाजी महाविद्यालय में अध्यापक हैं। महाविद्यालय में जाने के लिए हर दिन हमें 50 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती है। उमंग कार्यक्रम में दी जाने वाली रोचक जानकारी से हमारी हर दिन की यात्रा बहुत सुखद और आनंददायी बन जाती है।
1: आपने आगे लिखा है, इस कार्यक्रम से न केवल हमारी यात्रा सुखद बनती है बल्कि उससे हमारा अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया भी बहुत प्रभावी बन जाती है। उमंग कार्यक्रम हमारी दिनचर्या का अभिन्न अंग बन गया है। प्रोफेसर राजेंद्र पाल जी, अजीत जी, विमलेश जी और पूरी उमंग टीम को हमारा प्यार भरा नमस्कार।
0: जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं प्रतिष्ठित पुरस्कारों की।
1: श्रोताओं, कल हमने चर्चा की थी विश्व प्रसिद्ध नोबेल पुरस्कार की।
0: जी
1: आज हम आपको एशिया के एक ऐसे प्रतिष्ठित पुरस्कार की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे अक्सर एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। तो विमलेश जी, जरा श्रोताओं को ये तो बताइए कि आज हम किस पुरस्कार की बात करेंगे।
0: अजीत जी, आज हम बात करेंगे रमन मैग्सेसे पुरस्कार की।
1: बिल्कुल सही।
0: लेकिन इस पुरस्कार के पीछे की कहानी जानने के लिए हमें चलना होगा फिलीपींस के इतिहास में। तो आइए श्रोताओं, शुरू करते हैं
1: मैग्सेसे पुरस्कार की कहानी। तो विमलेश जी, पहला प्रश्न तो ये है कि इस पुरस्कार का नाम मैग्सेसे पुरस्कार क्यों पड़ा?
0: अजीत जी, सचमुच ये जानना बहुत जरूरी है। दरअसल रेमोन मैग्सेसे फिलीपींस के राष्ट्रपति थे। उनका जन्म 31 अगस्त 1907 को फिलीपींस में हुआ था। वे अपने सरल जीवन, जनता से जुड़ाव और सार्वजनिक सेवा के लिए जाने जाते थे और जनता में बहुत लोकप्रिय थे।
1: जी, राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने शासन में ईमानदारी और आम लोगों की समस्याओं पर बहुत ध्यान दिया। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन प्रश्न ये भी है कि उनके नाम पर पुरस्कार शुरू करने की जरूरत क्यों पड़ी, ये तो हमारे श्रोताओं को बताएं।
0: बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है आपने। इसके पीछे एक दुखद घटना है। 17 मार्च 1957 को एक विमान दुर्घटना में राष्ट्रपति रेमोन मैग्सेसे की मृत्यु हो गई। बहुत कम उम्र में उनका जीवन समाप्त हो गया।
1: और श्रोताओं, उनकी स्मृति को जीवित रखने और एशिया में ऐसे लोगों को सम्मानित करने के उद्देश्य से 1957 में रेमोन मैग्सेसे पुरस्कार की स्थापना की गई। पहला पुरस्कार समारोह 1958 में हुआ। लेकिन विमलेश जी, श्रोताओं को हम ये भी बताना चाहेंगे जरूर कि ये पुरस्कार किन लोगों को दिया जाता है।
0: अजीत जी, ये पुरस्कार ऐसे व्यक्तियों या संस्थाओं को दिया जाता है जिन्होंने एशिया में समाज और मानव जीवन को बेहतर बनाने के लिए उल्लेखनीय कार्य किया हो, जैसे
1: सामाजिक सेवा, सामुदायिक नेतृत्व, पत्रकारिता, साहित्य, कला, शिक्षा और अन्य क्षेत्रों में असाधारण योगदान देने वाले लोगों को भी ये सम्मान मिल सकता है।
0: जी।
1: भारत के कई उल्लेखनीय व्यक्तियों और संस्थाओं को भी रेमोन मैग्सेसे पुरस्कार मिल चुका है।
0: मुझे लगता है इस पुरस्कार की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये हमें बताता है समाज में बदलाव केवल बड़े बड़े नामी लोगों से नहीं आता।
1: जी विमलेश जी, आपने बिल्कुल सही कहा। किसी गाँव में काम करने वाला कोई सामाजिक कार्यकर्ता, किसी गरीब बच्चे को पढ़ाने वाला शिक्षक, कोई सकारात्मक पत्रकार या सामुदायिक हित के लिए लगातार काम करने वाला व्यक्ति भी समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है।
0: यानी रेमोन मैग्सेसे पुरस्कार की मूल भावना है निस्वार्थ सेवा और समाज के प्रति जिम्मेदारी।
1: जी बिल्कुल, ये पुरस्कार हमें याद दिलाता है कि किसी भी काम की महानता केवल इस बात से तय नहीं होती कि उसे कितने लोग देख रहे हैं, बल्कि इस बात से होती है कि उससे कितने लोगों के जीवनों में सकारात्मक परिवर्तन आया।
0: तो अजीत जी, अगर हम अपने जीवन में कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो क्या हमें किसी बड़े

0: उमंग CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है उमंग कार्यक्रम में। विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं आज का सुविचार जो हमें भेजा है पुराना तालाब डुमराव बिहार से वलीउल्लाह अंसारी और अस्मा नाज अंसारी जी ने। लिखते हैं,
2: ठोकर इसलिए नहीं लगती कि इंसान गिर जाए, ठोकर इसलिए लगती है कि इंसान उससे सबक लेकर संभल जाए।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपके इतने सुंदर विचार के लिए। और आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो सबसे पहला संदेश हमें मिला है कांडला बंदरगाह कच्छ से जगदीश जौहरी, पूजा और पायल।
2: इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है साहूपारा सहसपुर से छोटकू।

0: अवसर का इंतजार करना चाहिए।
1: बिल्कुल नहीं विमलेश जी, बिल्कुल नहीं। शुरुआत अपने आसपास से ही की जा सकती है।
0: एक बच्चा पढ़ाना,
1: दूसरी बात किसी जरूरतमंद की मदद करना,
0: पर्यावरण की रक्षा करना,
1: ईमानदारी से अपना काम करना
0: और समाज में सकारात्मक सोच फैलाना,
1: ये सभी छोटे छोटे कदम मिलकर बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं।
0: जी तो श्रोताओ, आज की कहानी हमें एक सुंदर संदेश देती है कि
1: सम्मान पाने के लिए महान काम मत कीजिए। महान काम इसलिए कीजिए क्योंकि उससे किसी का जीवन बेहतर हो सकता है।
0: और शायद यही रेमोन मैग्सेसे पुरस्कार की सबसे बड़ी प्रेरणा है। तो श्रोताओ, ये थी आज की जानकारी एशिया के नोबेल पुरस्कार कहे जाने वाले रेमोन मैग्सेसे पुरस्कार की। अब सुनिए आज का प्रश्न।
1: तो हमारा आज का प्रश्न है कि मैग्सेसे पुरस्कार किस देश के द्वारा और किन की स्मृति में दिया जाता है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: मैग्सेसे पुरस्कार किस देश के द्वारा और किन की स्मृति में दिया जाता है?
1: आप इस नंबर पर या हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर हमारे प्रश्न का उत्तर या अपनी प्रतिक्रियाएं भेज सकते हैं।
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT के बारे में ताजा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकें डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। वेबसाइट पर उपलब्ध विकल्पों पर जाकर आप इन पुस्तकों को डाउनलोड कर सकते हैं।
1: और हाँ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं तो NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।
0: जी,
1: इस चैनल पर आप उन कार्यक्रमों को भी सुन सकते हैं जो उमंग कार्यक्रम में प्रसारित होते हैं। और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। कार्यक्रम है अपना अपना काम।
0: NCERT की तीसरी कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में संदेश दिया गया है कि हम सबका अपने परिवार और समाज में एक विशेष उत्तरदायित्व तो और कार्य है, उसे हमें पूरे समर्पण के साथ निभाते हुए कार्य करना चाहिए।

0: सिमरन बाग में बैठी स्कूल का काम कर रही थी।
1: अंकल चलती जाती चीटी, शम का राग सुनाती चीटी। सचमुच कैसी कलाकार है, घर को खूब सजाती चीटी। ये हो गया मेरा स्कूल का काम। ओहो मैं तो थक गई।
0: वो सोचने लगी,
1: इतना सारा लिखने पढ़ने का काम, स्कूल जाओ तो वहां पढ़ो, घर आओ तो फिर पढ़ो, कितना अच्छा होता अगर मुझे पढ़ना ना पड़ता।
0: पुस्तक रख सिमरन चारों ओर देखने लगी। उसने देखा कि मधुमक्खियां आनंद पूर्वक एक फूल से दूसरे फूल तक उड़ रही थीं।
1: मैं अभी मधुमक्खी बनना चाहती हूँ।
0: भिन्न भिन्न करती मधुमक्खियां रुक गईं। वे अचंभित होकर बोली,
2: तुम तो इतनी सुखी हो, तुम क्यों हमारे जैसा नन्हा कीड़ा बनना चाहती हो?
1: मुझे क्या सुख है, इतना तो पढ़ना पड़ता है। मैं तो तुम्हारी तरह डाल डाल फूल फूल उड़ना चाहती हूँ।
2: इधर से उधर उड़ना हमारा काम है। सारे दिन उड़ उड़ कर रस इकट्ठा करते करते हमारे पंख थक जाते हैं। और
0: सिमरन ने कान बंद कर लिए।
1: सारे दिन पंख फैलाकर उड़ना पड़े तो मैं बहुत थक जाऊंगी।
0: फिर उसने ऊपर देखा, फलों से लदा पेड़।
1: हाँ अगर मैं पेड़ होती तो अच्छा था, आराम से एक जगह खड़े खड़े सब कुछ मिल जाता।
0: पेड़ हंसने लगा।
3: मैं समझ गया, तुम सोचती हो कि मैं आराम से खड़ा रहता हूं। बस सुनो, मेरे शरीर

0: का तो हर अंग दिन रात काम करता है। जड़ें मिट्टी से पानी खींचती हैं, पत्ते दिन भर खाना बनाते हैं, और इतने परिश्रम के पश्चात जो फल उगते हैं वो भी हम तुम्हें दे देते हैं।
1: सिमरन ने आंखें झुका ली।
2: सच, ये पेड़ तो बहुत परिश्रम करते हैं, फल तो हम ही खा लेते हैं। लेकिन इस चिड़ियों की मौज है।
1: सिमरन ने चिड़ियों को दाना खाते देखकर कहा,
2: हाँ, मैं भी चिड़िया बन जाती तो ठीक था।
3: नाना, ये क्या सोच रही हो? एक एक दाना ढूंढते ढूंढते सारे दिन उड़ती हूँ मैं। घोंसला बनाने के लिए भी बहुत परिश्रम करना पड़ता है, और तो और।
2: बस बस, मैं समझ गई।
1: वो सोचने लगी,
2: परिश्रम से ही सब जीते हैं। मुझे भी परिश्रम करना चाहिए और मन लगाकर पढ़ना चाहिए।
1: उसने अपनी पुस्तकें उठाई और उत्साह से स्कूल का काम करने बैठ गई।
2: सचमुच कैसी कलाकार है, घर को खूब सजाती चींटी।
4: तो बच्चों, सुना आपने? मधुमक्खी, चिड़िया, पेड़, चींटी सभी अपना अपना काम करते हैं। जरा सोचिए कि हमारा अपना काम पढ़ाई के अलावा और भला क्या क्या हो सकता है। अपना काम हो सकता है जैसे सुबह उठकर अपना बिस्तर ठीक करना, स्कूल से आकर बस्ता सही जगह पर रखना, और हाँ, माता पिता की जहां तक हो सके मदद करना। है ना ये हमारा अपना काम? तो आइए, जब सब करते हैं अपना अपना काम, तो क्यों ना हम सब भी करें अपना अपना काम।
5: अभी आपने सुना ये कार्यक्रम।

0: और आइए अब सुनते हैं भारत के प्रथम इंजीनियर सर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया के जीवन और उपलब्धियों पर आधारित ये विशेष कार्यक्रम।
1: भारत ने सभी क्षेत्रों में एक से एक विलक्षण प्रतिभाओं को जन्म दिया है। इन प्रतिभाओं का अमूल्य योगदान पूरी मानवता के लिए वरदान सिद्ध हुआ है।
2: ऐसे ही एक महान व्यक्तित्व थे डॉक्टर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया। उन्हें भारतीय इंजीनियरिंग का जनक कहा जाता है। वो एक अद्भुत प्रतिभा वाले विलक्षण अभियंता और युग दृष्टा थे। उनका जन्म कर्नाटक राज्य के कोलार जिले के चिक्का बल्लापुर कस्बे में 15 सितंबर 1860 को

0: हुआ था।
1: बहुत कम लोग जानते हैं कि भारत में अभियंता दिवस या इंजीनियर्स डे उन्हीं के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 15 सितंबर को मनाया जाता है। उनके पिता का नाम श्रीनिवास शास्त्री तथा माता का नाम वेंकचम्मा था। उनके पूर्वज आंध्र प्रदेश के मोक्षगुंडम से यहाँ आकर बस गए थे, इसलिए मोक्षगुंडम उनके पारिवारिक नाम में जोड़ा जाने लगा।
0: जब बालक विश्वेश्वरैया मात्र 12 साल के थे, तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई। उनकी प्रारंभिक शिक्षा उनके जन्म स्थान पर स्थित एक प्राइमरी स्कूल में हुई। पिता की मृत्यु के बाद आर्थिक संकट ऐसा रहा कि उन्हें बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर अपनी पढ़ाई का खर्च उठाना पड़ता था।
1: उन्होंने कठोर परिश्रम किया और परिस्थितियों से संघर्ष किया और आखिर आ ही गया वर्ष 1881, जब उन्होंने पूरे मैसूर राज्य में विज्ञान स्नातक की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया।
0: बहुत अच्छा काम। साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज की सभा श्री मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया के सम्मान में बुलाई गई है, जिन्होंने पूरे मैसूर राज्य में प्रथम श्रेणी में सबसे अधिक अंक लाकर विज्ञान में स्नातक की परीक्षा पास की है। उनसे निवेदन है कि मंच पर आकर प्रशस्ति पत्र ग्रहण करें। भाई वाह, कमाल कर दिया। साथियों, इतना ही नहीं, आज ही विश्वविद्यालय में मैसूर राज्य के दीवान का संदेश आया है कि श्री मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी की आगे की पढ़ाई और बाकी पूरा खर्च मैसूर सरकार ही वहन करेगी।
1: पूना के साइंस कॉलेज से उन्होंने सन 1883 में सिविल इंजीनियरिंग की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया और महाराष्ट्र सरकार के नासिक लोक निर्माण विभाग में सहायक इंजीनियर के पद पर नियुक्त हुए। भवन निर्माण, जल और नगर प्रबंधन जैसे कार्यों में उनका सानी नहीं था।
0: उन दिनों भारत आजाद नहीं हुआ था। हुआ ये कि सक्कर में पानी की भारी समस्या खड़ी हो गई। बता दें कि सक्कर सिंधु नदी के तट पर बसा हुआ सिंध प्रांत का एक नगर है, इसे सुकूर भी कहते हैं। समस्या के निदान के लिए विश्वेश्वरैया जी को विशेष सलाहकार के रूप में ब्रिटिश सरकार के मुख्य अभियंता द्वारा सक्कर बुलाया गया।
2: सर, गुड मॉर्निंग। सर, गुड मॉर्निंग सर। नमस्ते फ्रेंड्स, आप सबको पता है कि आज की खास बैठक सक्कर नगर पालिका में पानी की समस्या पर बात करने के लिए बुलाई गई है। हमें इसका समाधान खोजना है।
3: जी सर, इन दिनों अखबारों में भी इसके बारे में बहुत छप रहा है और जनता बहुत परेशान है सर।
2: ये एक सीरियस बात है। हमें खुशी है कि हमारी खास गुजारिश पर आज हमारे बीच मिस्टर मोक्षगुंडम मौजूद हैं। आपने बहुत सी जगहों पर बहुत उम्दा काम किया है। मिस्टर मोक्षगुंडम, हम आपके विचार जानना चाहते हैं।
4: धन्यवाद सर। हमें नदी के आसपास हर 500 मीटर की दूरी पर गहरे गड्ढे खोदने होंगे ताकि बाढ़ के समय सिंधु नदी का पानी इन गड्ढों में भर जाए और वर्षा के जल का भंडारण हो सके। हमने बहुत से स्थानों पर इस तरीके को अपनाया है सर।
3: आप कहना चाहते हैं कि ऐसा करने से बाढ़ का पानी गड्ढों में भर जाएगा, इससे बाढ़ का पानी शहर में भी नहीं जाएगा और पानी जमा भी हो जाएगा, है ना?
4: जी सर। और इसके अलावा हमें शहर की सभी ऊंची जगहों पर बड़ी बड़ी टंकियां बनानी होंगी।
3: क्यों?
4: ताकि वहां भी वर्षा का जल जमा किया जा सके।
3: हो।
4: और हाँ सर, ऊंटों द्वारा टंकियों तक जल पहुँचाया जा सकता है।
2: यू मीन वॉटर हार्वेस्टिंग। बहुत अच्छा विचार है आपका। मैं आपके डिपार्टमेंट को आज ही लेटर लिखता हूँ कि आपका तबादला कुछ समय के लिए सक्कर में कर दिया जाए।
4: थैंक यू सर, मुझे भी आपके साथ काम करके बहुत खुशी होगी सर।
2: ओके ओके ओके, वेलकम वेलकम।
4: थैंक यू।
0: साथियों, विश्वेश्वरैया

0: इस सुझाव का परिणाम बहुत ही प्रभावी रहा। बाढ़ की समस्या से भी छुटकारा मिला और सक्कर जैसे शुष्क प्रदेश में जल की समस्या बहुत हद तक दूर हो गई। ये परियोजना देश के बहुत से जल संकट का सामना करने वाले क्षेत्रों के लिए उदाहरण बन गई। इस समय उनकी उम्र मात्र 32 वर्ष थी। लोक निर्माण विभाग में रहकर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया जी ने कोल्हापुर, बेलगाम, धारवाड़, बीजापुर, अहमदाबाद और पूना समेत कई शहरों में जल आपूर्ति परियोजनाओं पर खूब काम किया था।
1: अब तक उनकी ख्याति पूरे देश में फैल गई थी। उन्हें मैसूर राज्य का मुख्य अभियंता नियुक्त कर दिया गया और साथ साथ दक्षिण भारत के कर्नाटक संभाग का रेलवे सचिव भी। एक बार उनके साथ बड़ी रोचक घटना हुई। वो ट्रेन से लोक निर्माण विभाग के किसी सम्मेलन में मुख्य वक्ता के रूप में भाग लेने जा रहे थे। ट्रेन में कई अंग्रेज भी थे।
0: सभी अपनी अपनी बातों में व्यस्त थे और ट्रेन तेज गति से चल रही थी। अचानक मोक्ष गुंडम उठे और ट्रेन की जंजीर खींच दी। लोगों को बड़ा गुस्सा आया। उनका अचानक उठना और तेजी से जाकर ट्रेन का जंजीर खींचना किसी की समझ में नहीं आया।
2: किसने खींची चेन?
3: सर, हमने नहीं किया। हाँ, हमने नहीं किया, इन्होंने किया है। हम तो मना कर रहे थे सर।
4: जी सर, मैंने ही चेन खींची है। सर, मुझे लगा कि आगे की पटरियां उखड़ी हुई हैं।
2: व्हाट? क्या मजाक है? ये आप कैसे कह सकते हैं?
4: श्रीमान, यदि विश्वास नहीं है तो चलकर स्वयं देख लीजिए।
2: आइए आइए, देखते हैं।
4: आइए, हम भी चलते हैं।
2: लेकिन मिस्टर, कान खोलकर सुन लीजिए, अगर बात आपकी गलत निकली ना तो आपको सजा हो सकती है। आइए।
4: ठीक है सर, मुझे मंजूर है।
0: और मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया की बात सच निकली। कुछ दूरी पर उन्हें पटरियां उखड़ी हुई दिखाई दी।
4: आइए सर, आइए देख लीजिए।
2: अभी तक तो यहाँ भी ठीक है। आइए आगे देखते हैं। अरे एक मिनट, यहाँ पटरियां तो सच में उखड़ी हुई हैं। ये देखिए, यहाँ पटरियां उखड़ी हुई हैं। अब मिस्टर, आपको कैसे पता चला?
4: सर देखिए, जब सभी अपनी अपनी बातों में व्यस्त थे तो मुझे ऐसा लगा कि ट्रेन की गति में अचानक परिवर्तन आ गया है और पटरियों की आवाज भी बदल गई है। सामान्य स्थिति में ऐसी आवाज प्राय सुनाई नहीं देती है। तभी मुझे लगा कि कुछ तो गड़बड़ है।
2: थैंक यू वेरी मच सर, आपने आज बहुत से यात्रियों की जान बचा ली।
3: We are so thankful to you. It's amazing. May I know your name, please?
4: I am Dr. Moksh Gundam Vishweshwaraiah.
3: The engineer in chief of Mysore state.
5: और रेलवे सचिव भी।
2: नमस्कार सर।
4: जी जी सर, मैं वही हूँ।
3: नमस्कार सर, नमस्कार। We were actually going to attend your meeting only. It's actually our privilege to meet you personally. Thank you very much, sir. Thank you.
4: धन्यवाद।
0: तो ऐसे थे डॉक्टर विश्वेश्वरैया। बांध बनाने की प्रक्रिया में स्वचालित जल द्वारों का प्रयोग उनका अद्भुत नवाचार था। इस तकनीक को डॉक्टर विश्वेश्वरैया के नाम पर पेटेंट किया गया। आज भी ये प्रणाली पूरे विश्व में प्रयोग में लाई जा रही है।
1: कृष्णराज सागर बांध के निर्माण के कारण मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया का नाम पूरे विश्व में सबसे अधिक चर्चा में रहा। मैसूर राज्य में उनके योगदान को देखते हुए मैसूर के महाराजा ने उन्हें सन 1912 में राज्य का दीवान यानी मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया।
0: लोक निर्माण कार्य में उनके अतुल्य योगदान को देखते हुए उन्हें अनेकानेक सम्मान और पुरस्कारों से नवाजा गया। सन 1904 में उन्हें 50 साल तक लंदन इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर्स की मानद सदस्यता दी गई। 1921 में वो कलकत्ता विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टर ऑफ साइंस से सम्मानित किए गए।
1: सन 1955 में कृतज्ञ राष्ट्र ने उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया।

0: जब सर एम विश्वेश्वरैया 100 साल के हुए तब भारत सरकार ने उनके सम्मान में एक डाक टिकट जारी किया। 101 साल की उम्र में 14 अप्रैल 1965 को विश्वेश्वरैया का निधन बेंगलोर आज के बंगलुरु में हो गया।
1: सर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया की दूरदर्शिता के कारण मैसूर में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाया गया और लड़कियों की शिक्षा के लिए पहल की गई। समाज के संपूर्ण विकास के उनके कार्यों के कारण ही उन्हें कर्नाटक का भगीरथ भी कहा जाता है। सर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया को उनके अतुल्य योगदान के लिए राष्ट्र और विश्व का आभार।
2: अभी आपने सुना ये कार्यक्रम।
3: जी मैं रमेश पिछले 20 साल से ट्रक चला रहा। रात को सफर लंबा होता है और रास्ते अंधेरे। उस रात मैंने गाड़ी एक ढाबे के पास खड़ी की थी और रिफ्लेक्टर के ऊपर मिट्टी जमी हुई थी, तो मैंने सोचा कल सुबह साफ कर दूंगा। मुझे बात छोटी सी लगी, सिर्फ 1 मिनट लगता है साफ करने में। उस रात किसी की जान भी तो जा सकती थी।

0: में सड़क किनारे खड़े वाहन पर साफ और सही रिफ्लेक्टर होना आवश्यक है ताकि वो दूर से स्पष्ट रूप से दिखाई दे।
1: तो श्रोताओ, अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत को
2: और उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी जगबंधु, चेतना,
1: कुसुमलता,
2: वीरेंद्र
1: और हमारी आज की विशेषज्ञ
2: सहायक आचार्य दीपमाला जी के साथ कल तक के लिए विमलेश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

0: நேர்களே, நமது ஆகாஷ்வாணி திருநெல்வேலி வானொலியின் மத்திய அலை 1197 கிலோஹெர்ட்ஸின் இன்றைய ஒலிபரப்பு இத்துடன் நிறைவு பெறுகிறது. எமது அடுத்த ஒலிபரப்பு நாளை காலை 5:50 இதே அலைவரிசையில் இனிதே ஆரம்பமாகும். நிகழ்ச்சிகளை பண்பலை 102.6 மெகாஹெர்ட்ஸில் தொடர்ந்து கேட்கலாம்.
1: नमस्कार श्रोताओं, कारोबारी खबरों के साथ हम मार्केट मंत्रा कार्यक्रम लेकर हाजिर हैं। आज की खबरों पर चर्चा के लिए फोन लाइन पर हमारे साथ हैं आर्थिक विश्लेषक पुनीत जैन जी। पुनीत जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
2: धन्यवाद निखिल।
1: और सबसे पहले शुरुआत करते हैं हेडलाइंस। अर्जुन जी,
3: बेंचमार्क डोमेस्टिक स्टॉक मार्केट इंडिसेस डिक्लाइन, सेंसेक्स फॉल्स ओवर 400 पॉइंट्स, निफ्टी सेटल्स एट 22,603। आरबीआई हाइक्स रेपो रेट बाय 25 बेसिस पॉइंट्स टू 5.5%, changes policy stance to calibrated tightening, and International Monetary Fund IMF calls on countries to take faster action to reduce debt and tackle growing inequality.
1: घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज गिरावट। सेंसेक्स 400 अंक से अधिक लुढ़का, निफ्टी 22,603 पर पहुंचा। भारतीय रिजर्व बैंक ने नीतिगत रेपो दर में 25 आधार अंकों की बढ़त के साथ 5.5% किया, और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने ऋण में कमी लाने तथा असमानता से निपटने के लिए देशों से त्वरित कार्रवाई का आह्वान किया।

0: And before we take on the main stories in detail, here is an important disclaimer. The views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में दो दिन से जारी तेजी आज थम गई। सेंसेक्स 429 अंक यानी 0.6% गिरकर 72,639 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 173 अंक यानी करीब 0.8% नीचे आकर 22,603 पर पहुंच गया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के विस्तृत बाजार में मिड कैप सूचकांक में 0.6% से अधिक की गिरावट दर्ज हुई, जबकि स्मॉल कैप सूचकांक आज 0.3% चढ़ गया।
0: Benchmark domestic equity indices snapped their two-day rising streak today. The Sensex fell 429 points, 0.6% to close at 72,639. Nifty dropped 173 points, or nearly 0.8%, to settle at 22,603. In the broader market at the National Stock Exchange, mid-cap 100 index lost over 0.6%, while the small-cap 100 index advanced 0.3%.
1: सेंसेक्स में 30 कंपनियों में से 26 के शेयरों में गिरावट रही। टाइटन करीब 3.5%, BEL 2.2% और एशियन पेंट्स 2.1% नीचे रहे। वहीं दूसरी ओर कोटक महिंद्रा बैंक 2.2%, भारती एयरटेल 1.3% से अधिक और ICICI बैंक 1.1% से ज्यादा चढ़े।
0: In the sectoral indices on the Bombay Stock Exchange, 24 out of the 28 sectors edged downward. Among the top laggards, metals shed nearly 2.5%, consumer durables fell over 1.8%, and realty dropped more than 1.7%. In contrast, PSU banks gained 1.2%, housing finance as well as telecommunications jumped over 0.9%, and hospitals added more than 0.2%. The overall market breadth at the Bombay Stock Exchange was negative, as shares of 2,360 companies declined, 2,013 companies advanced, and 241 companies remained unchanged.
1: विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 36 पैसे गिरकर 96.78 पर बंद हुआ। पुनीत जी, कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद।
1: अब पुनीत, मुख्य सवाल पर आते हैं। अगर हम सितंबर की बात करें तो लगभग 6% की गिरावट हमने देखी और अक्टूबर में भी वो सिलसिला हमें थमता हुआ नजर नहीं आ रहा, और सबसे ज्यादा हमने देखी गिरावट आईटी के सेक्टर्स में। ओवरऑल आपसे जानना चाहूंगा कि अभी क्या उम्मीद लगती है कि हम इससे उबर पाएंगे या अभी भी ये सिलसिला जारी रहेगा?
2: तो निखिल, जैसे आपने कहा कि सितंबर का जो महीना था वो काफी निराशाजनक था स्टॉक मार्केट के लिए। हमने देखा 6% हेडलाइन इंडेक्सेस में गिरावट आई थी
1: जी।
2: कुछ हमने वहां पर रिबाउंड देखा था, जो मुझे लगता है वो एक डेड कैट रिबाउंड था, और आज दोबारा से बाजारों में गिरावट रही। मुख्य कारण तो जो इंटरेस्ट रेट को लेकर चिंताएं हैं, जो बॉन्ड यील्ड्स बढ़ रही है दुनिया में और हम देख रहे हैं कि उससे कमजोरी आ रही है अर्थव्यवस्था में, तो उसको लेकर आप देखें कि आज शेयर्स नीचे थे। आज भारत में आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी का अनाउंसमेंट भी थी, तो जो इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव सेक्टर्स हैं जैसे रियल्टी और बैंकिंग, इस तरह क्षेत्र में आप देखेंगे मेटल क्षेत्र में वहां पर गिरावट ज्यादा थी आज। और कुछ क्षेत्र सिलेक्टिवली हमने देखा वहां पर बाइंग थी, जैसा दिखा है आपने कि स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स में उतनी गिरावट नहीं है, वहां पर डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की बाइंग है, वहां पर फिर भी थोड़ा मजबूत ट्रेंड है, लेकिन लार्ज कैप्स जो है वहां पर गिरावट ज्यादा दिख रही है।
0: Puneet, PSU banks gained by 1.2%. We are also in the midst of the second quarterly earnings of companies. How do you see that reporting fundamentals of companies in terms of their profitability and revenue matching up to the sector valuation of companies?
2: So, Arjun, interestingly, if we look at the numbers behind the economy in terms of GDP growth, in terms of credit disbursals, we find that the economy is still doing very well. So my expectation is that when we see these second quarter numbers from companies, they would still be very good. And when, I'm not expecting any major decline in corporate earnings in the coming quarter. However, of course, these are concerns about inflation, about purchasing power of consumers, about certain segments of society where demand may be affected. So those concerns are pulling down the markets. But as

0: खाता विवरण में बैंक जमा खातों की जानकारी शामिल करने की सुविधा दी है। इससे डीमैट खाता धारक अपने डीमैट निवेश होल्डिंग्स और बैंक जमा की जानकारी एक ही स्थान पर देख सकेंगे। पुनीत जी, आपसे यही जानना चाहूंगा कि हमारे श्रोताओं को आसान शब्दों में बताएं कि NBFC अकाउंट एग्रीगेटर्स के बीच ये जो आपसी सहभागिता शुरू करने का निर्णय लिया गया है, ये है क्या और इससे लोगों को क्या क्या फायदा होगा?
1: देखिए देखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात आपने बताई। अभी हम ये देखते हैं कि जब लोग NBFC से, क्योंकि नॉर्मली NBFC से जो उपभोक्ता कंज्यूमर जो लोन लेते हैं वो छोटे लोन होते हैं, करीब 5,000 से लेके 50,000 तक के लोन्स होते हैं सामान खरीदने के लिए। और एक ही उपभोक्ता, एक ही कंज्यूमर कई सारी NBFC से, 3-4-5 NBFC से वो लोन्स लेते हैं
0: जी।
1: और एक तो लोन मैनेजमेंट कि कितना लोन है, कितना उसका रीपेमेंट है, वो इन्फॉर्मेशन पूरी तरह से अवेलेबल नहीं होती। इस वजह से बैंक्स भी लोन देने में या NBFC लोन देने में थोड़े हिचकिचाते हैं और साथ ही उनका इंटरेस्ट रेट भी ज्यादा होता है। तो RBI ने ये सुविधा दी है कि अब वो जो NBFCs हैं जो एक उपभोक्ता को लोन दे रही है वो आपस में इंफॉर्मेशन शेयर कर सकती है। उससे जो अच्छे उपभोक्ता है जो अपना रीपेमेंट टाइम पर करते हैं, क्रेडिट रेटिंग अच्छी है, उनको बेटर रेट मिल सकेंगे, आराम से लोन भी मिल सकेंगे उनको और उनका हम ट्रैक भी बेटर कर सकेंगे। दूसरा, आपने बताया कि जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स हैं उनके पास अभी हम देखते हैं तो हम जितने हमारे शेयर अकाउंट होते हैं उनका इकट्ठा हमें एक अकाउंट मिलता है जिसे हम CAS कहते हैं, कंपोजिट अकाउंट स्टेटमेंट कहलाती है। उसमें अब जो बैंक्स के जो FDs हैं उसकी इंफॉर्मेशन भी वो इंक्लूड करेंगे, तो एक ही जगह पे कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन सभी इन्वेस्टर्स को मिल पाएगी अपने बैंक डिपॉजिट के लिए भी और अपने जो डिपॉजिटरी अकाउंट्स हैं जिनमें शेयर्स हैं या म्यूचुअल फंड की यूनिट्स हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन एक ही जगह पर मिल पाएगी। मुझे लगता है बहुत अच्छा कदम है और अगेन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए और बेहतर होगा सभी कंज्यूमर्स इन्वेस्टर्स के लिए।
2: In more news, IMF Managing Director Kristalina Georgieva has called on countries both rich and poor to take faster action to reduce debt and tackle growing inequality. Speaking in Singapore ahead of the IMF World Bank meetings in Bangkok next week, she said governments have the tools to address economic challenges but need to take necessary policy decisions without further delay.
3: Global public debt is near its highest levels since after the Second World War and is on track to soon exceed 100% of GDP. In other words, to cover our debt, we have to put everything we have produced in 1 year in that pile.
2: Georgieva said also highlighted risks from the rapid expansion of artificial intelligence, including heavy investment in data centers, rising energy demand, and potential financial shocks if AI-related earnings fall short of expectations. She said AI is becoming a major driver of countries' economic fortunes, but its benefits are not reaching all countries equally. Puneet, very briefly, even though the earlier story is about managing debt for the customer regarding NBFC aggregators, now you have the IMF director saying that nations rich and poor need to tackle growing inequality and reduce debt, take necessary policy decisions, use the tools that they have in hand, and more importantly, the impact of AI.
1: Absolutely. In fact, what we were saying about small consumers earlier applies equally to large nations also. And unfortunately, find that large nations have been raising a lot of debt lately. Look at USA, the aggregate debt is more than $40 trillion now, the largest in the world. So clearly, and it is going to become a problem because interest rates will go up, inflation, it contributes to inflation, it contributes to a fall in consumption. So IMF MD is basically warning countries against raising more debt because higher debt typically affects the poorer sections of the society because for them it becomes more difficult to sustain their living. And countries have less capital, less money to spend for welfare schemes. So IMF, I think, is giving the right warning to countries not to raise debt beyond a point, trying to manage their debt obligations, debt servicing, so that they can divert that money to welfare schemes. And I think it's appropriate for countries to do that.
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दूरदर्शी नीतियों और कड़ी मेहनत के बल पर भारत वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का अपना सपना जरूर पूरा करेगा। नई दिल्ली में आज विकसित भारत संकल्प सभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि कभी नीतिगत निष्क्रियता की चर्चा से जुड़ा भारत अब अपनी बढ़ती ताकत और चुनौतियों से निपटने की क्षमता के लिए चर्चा में है। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में स्थिति पूरी तरह से बदल गई है। श्री मोदी ने कहा कि पहले आयात बढ़ाने

0: प्रयास किए जाते थे, जबकि आज भारत निर्यात के नए रिकॉर्ड बना रहा है। उन्होंने कहा कि पहले भारत अपनी ज़रूरत के मोबाइल फ़ोन आयात करता था, जबकि आज भारत में बने मोबाइल फ़ोन वैश्विक बाजार में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कृषि को भी भारत में आए बदलाव का एक बड़ा उदाहरण बताया।
1: आज़ादी के बाद से लेकर अब तक खेती की विकास दर अगर किसी दशक में निरंतर सबसे अधिक रही, वो साल 2015 से 2025 तक का दशक, इसने खेती की ग्रोथ के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं।
2: In Monio, the second India-European Free Trade Association Prosperity Summit was held in New Delhi today. President of Switzerland, Guy Parmelin, who is currently on a three-day visit to India, was present in the summit. India and the EFTA, comprising Switzerland, Iceland, Liechtenstein and Norway, mark 1 year since implementation of the Trade and Economic Partnership Agreement. Talking to reporters after attending the summit, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw

0: Currently on a three-day visit to India, was present in the summit. India and the EFTA, comprising Switzerland, Iceland, Liechtenstein and Norway, mark 1 year since implementation of the Trade and Economic Partnership Agreement. Talking to reporters after attending the summit, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said that the European countries today consider India as a major hub for innovation and manufacturing.
1: एफ्टा के अग्रीमेंट से जिस तरह से करीब करीब अब तक 160,000 लोगों को रोजगार इसमें मिल चुका है नई कंपनीज जो भारत आई है अपना प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग बेस डिजाइन बेस रिसर्च बेस भारत को बना रही है और आने वाले समय में इससे करीब करीब 1 मिलियन यानी 10 लाख के आसपास टोटल नया रोजगार पैदा होगा युवाओं के लिए नई अपॉर्चुनिटीज पैदा होगी और भारत के एमएसएमईज के साथ जिस तरह से स्विट्जरलैंड के नॉर्वे के लिक्टेनस्टीन के एमएसएमईज जुड़ रहे हैं वो अपने आप में एक बहुत बड़ी ग्रोथ की नई जर्नी बनेगा
2: नया मर्चेंट डिस्काउंट ट्रेड एमडीआर फ्रेमवर्क 15 अक्टूबर से लागू होगा इसके तहत 2,000 रुपए तक के यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई भुगतान पर कोई एमडीआर नहीं लगेगा भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई ने कहा कि ये एक टिकाऊ वाणिज्यिक ढांचा स्थापित करने से नए फिनटेक स्टार्टअप्स और प्रौद्योगिकी कंपनियों को डिजिटल भुगतान क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करेगा एनपीसीआई ने कहा है कि जब भुगतान प्रसंस्करण शून्य एमडीआर व्यवस्था के तहत संचालित होता है तो केवल पर्याप्त पूंजी वाले बड़े तकनीकी समूह ही लंबे समय तक होने वाले परिचालन घाटे को वहन कर सकते हैं एनपीसीआई के अनुसार एक पूर्वानुमानित वाणिज्यिक राजस्व मॉडल प्रतिस्पर्धा के लिए समान अवसर उपलब्ध कराएगा इससे छोटे और नवोन्मेषी स्टार्टअप्स को प्रतिस्पर्धा करने विशेष भुगतान सॉफ्टवेयर विकसित करने और वित्तीय सेवाओं की पहुंच का विस्तार करने में मदद मिलेगी एनपीसीआई ने यह भी कहा कि बढ़ती बाजार प्रतिस्पर्धा से अंततः उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं अधिक विश्वसनीय भुगतान ऐप्स और अधिक विकल्प मिलेंगे
0: The 57th GST Council meeting will be held at Bharat Mandapam in New Delhi tomorrow. The meeting, to be chaired by Finance Minister Nirmala Sitharaman, will discuss policy reforms to resolve GST disputes and improve the flow of input tax credit with the aim of reducing the time and cost of compliance. Sources in the Finance Ministry said that the government will propose a five-pronged plan for the next set of reforms to the goods and services tax system.
2: एशियाई और यूरोपीय बाजारों में आज गिरावट का रुख देखने को मिला एशियाई बाजारों की बात करें तो दक्षिण कोरिया का कोस्पी सूचकांक करीब 2% गिर गया जापान का निक्केई 225 सूचकांक 0.9% से अधिक की गिरावट के साथ बंद हुआ
0: मूविंग ऑन टू द क्रूड ऑयल मार्केट ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस रोज टुडे अमिड कंटिन्यूड सप्लाई रिस्क्स Brent crude was trading 1.2% up at $101.78 per barrel. West Texas Intermediate crude was trading over 0.7% higher at $90.11 per barrel at the time of writing this report.
2: पुनीत जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मध्यपूर्व में तनाव बढ़ रहा है और वैश्विक तेल सप्लाई पर भी उसका असर पड़ रहा है क्या लगता है कि इसकी कीमतों में और किस तरह की स्थिति हम देख सकते हैं आगे चल करके
3: लेकिन देखिए हमें लग रहा है कि क्रूड के जो प्राइसेस है वो अब जो स्टेबल हो गए हैं $100 जो ब्रेंट क्रूड का प्राइस है $100 पर बैरल ये उसके आसपास अब काफी स्टेबल चल रहा है और मुझे लगता है यही एक ट्रेंड रहेगा क्योंकि सप्लाईज फ्रॉम हॉर्मुज स्ट्रेट वो भी थोड़ी रिस्टोर हुई है थोड़ी बढ़ी है तो मुझे लगता है ये प्राइसेस अब यहीं पे स्टेबल होने चाहिए लॉन्ग टर्म में
2: जी आगे बढ़ते हैं भारतीय सर्राफा बाजार में आज सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज हुई इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के क्लोजिंग रेट के अनुसार 24 कैरेट सोना 0.5% गिरकर लगभग 1,47,767 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया था वहीं चांदी की कीमत में 0.9% की गिरावट रही और ये 2,20,866 रुपये प्रति किलोग्राम पर था पुनीत जी गोल्ड और सिल्वर पर आपके कमेंट्स
3: देखिए जैसे जैसे अमेरिका में इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं हम देख रहे हैं कि डॉलर इंडेक्स लगातार बढ़ रहा है और उसका नेगेटिव असर सीधा गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस में पड़ता है तो डॉलर इंडेक्स करीब 102 हो गया है तो वहां पर हम देख रहे हैं कि गोल्ड प्राइसेस नीचे हैं और मुझे लगता है अभी गोल्ड में थोड़ी कमजोरी रहेगी क्योंकि ये बस नहीं होने वाला ट्रेंड इंटरेस्ट रेट्स का या डॉलर इंडेक्स का तो ये यही कमजोरी रहेगी
2: जी पुनीत जी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और हमसे चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत आभार धन्यवाद
3: धन्यवाद
0: And before we close, a reminder of the headlines. Benchmark domestic stock market indices decline. Sensex falls over 400 points. Nifty settles at 22,603. RBI hikes repo rate by 25 basis points to 5.5%. Changes policy stance to calibrated tightening. And International Monetary Fund calls on countries to take faster action to reduce debt and tackle growing inequality. And that's it in this edition of Market Mantra for now. Goodbye.
4: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय

0: ஒலித்தந்த பாடலோடு நிறைவு பெறுவது திரைக்கான நிகழ்ச்சி. சில நொடிகளில் இந்தியிலும் ஆங்கிலத்திலும் செய்திகள். டெல்லி அஞ்சல்
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सरकार प्रमुख के रूप में निरंतर 25 वर्षों की जनसेवा पूरी की. श्री मोदी ने नई दिल्ली के सरोजनी नगर स्थित श्री विनायक मंदिर का दौरा किया और वहां पूजा अर्चना की. इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत संकल्प सभा को संबोधित किया. उन्होंने कहा कि दूरदर्शी नीतियों और कड़ी मेहनत के माध्यम से भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने के अपने सपने को अवश्य पूरा करेगा. प्रधानमंत्री ने कहा कि ये भारत के लिए बड़े लक्ष्य निर्धारित करने का समय है.
2: विकसित भारत का लक्ष्य, आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य, इकोनॉमी को टॉप 3 में लाने का लक्ष्य, गरीबी का नामो निशान मिटाने का लक्ष्य, ड्रग्स फ्री इंडिया बनाने का लक्ष्य. हमें ऐसा भारत बनाना है कि लक्ष्य ऐसे हो कि हर क्षेत्र में तिरंगा शान से लहराए.
1: श्री मोदी ने कहा कि पहले आयात बढ़ाने के प्रयास किए जाते थे, जबकि भारत निर्यात के नए रिकॉर्ड बना रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार प्रमुख के रूप में 25 वर्ष होने पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से मिली. शुभकामनाओं और स्नेहपूर्ण शब्दों के लिए उनका आभार व्यक्त किया है. प्रधानमंत्री ने कहा कि देश ने अब तक जो प्रगति की है उसमें करोड़ों भारतीयों की भागीदारी का महत्वपूर्ण योगदान है. प्रधानमंत्री ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की शुभकामनाओं के लिए भी उनका आभार व्यक्त किया है. जापान, भूटान, फिलीपींस, बेल्जियम, नेपाल, नाइजीरिया और बोत्सवाना सहित कई देशों के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सरकार के प्रमुख के तौर पर लगातार 25 वर्ष की जनसेवा पूरी करने पर बधाई दी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार प्रमुख के रूप में अपने 25 वर्ष पूरे होने पर विश्व नेताओं से मिली शुभकामनाओं के लिए आभार व्यक्त किया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस IMC के 10वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे. इंडिया मोबाइल कांग्रेस का आयोजन 7 से 10 अक्टूबर तक किया जा रहा है. ये आयोजन सहयोग

0: देश और ज्ञान के आदान प्रदान के लिए एक वैश्विक मंच प्रदान करेगा। आईएमसी 2026 का विषय सीमाओं के बिना विस्तार है। महिला और बाल विकास विभाग का दो दिवसीय शिखर सम्मेलन आज नई दिल्ली में आयोजित होगा। ये सम्मेलन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर आयोजित विभागीय सम्मेलनों की श्रृंखला का दूसरा सम्मेलन है। इसका उद्देश्य केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर तालमेल बनाना और महिला तथा बाल विकास से जुड़े कामों को और प्रभावी बनाना है। भारतीय वायुसेना का 94वां वायुसेना दिवस आज मनाया जाएगा। इस वर्ष वायुसेना दिवस की थीम है अचूक, अभेद्य और सटीक। वायुसेना दिवस की पूर्व संध्या पर आकाशवाणी के माध्यम से अपने संदेश में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने कहा कि भारतीय वायुसेना देश की सुरक्षा के लिए पूरी सतर्कता और दृढ़ संकल्प के साथ हमेशा तैयार है। वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद की 57वीं बैठक आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन की अध्यक्षता में होने वाले इस बैठक में जीएसटी विवादों के समाधान और इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए नीतिगत सुधारों पर चर्चा होगी। इसका उद्देश्य अनुपालन में लगने वाले समय और लागत को कम करना है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बढ़ती महंगाई पर काबू पाने के लिए नीतिगत रेपो दर में 25 आधार अंकों की बढ़ोतरी की है। इसके साथ ही रेपो दर बढ़कर 5.5% हो गई है। मुंबई में द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए गवर्नर संजय मल्होत्रा ने ये जानकारी दी। वर्ष 2026 का रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार फ्रांस के हेनरी कागन और जापान के केन्सो सुआव को देने की घोषणा की गई है। स्वीडिश रॉयल एकेडमी ऑफ साइंसेज ने ये सम्मान उन्हें असममित कार्बनिक संश्लेषण में नॉन लीनियर प्रभावों और ऑटो कैटालिसिस की खोज के लिए देने का निर्णय किया है। ओलंपिक पदक विजेता स्वप्निल कुसाले और सरबजोत सिंह मिस्र के काहिरा में आज से शुरू होने वाले आईएसएसएफ विश्व कप 2026 में 35 सदस्यीय भारतीय निशानेबाजी टीम की अगुवाई करेंगे। ये निशानेबाजी विश्व कप इस वर्ष का चौथा और अंतिम चरण है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, The news read by Harpreet Kaur. Prime Minister Narendra Modi completed 25 years of continuous public service as head of the government. Mr. Modi visited Sri Vinayak Temple at Sarojini Nagar in New Delhi and offered prayers there. On the occasion, the Prime Minister addressed the Viksit Bharat Sankalp Sabha in New Delhi. He said that India will definitely fulfill its dream of becoming a developed nation by 2047 through visionary policies and hard work. Addressing the Viksit Bharat Sankalp Sabha in New Delhi, Mr. Modi said that present government's policy focuses on solutions for all citizens.
2: Sabka saath, sabka vikas, yahi mere liye. सुशासन का आधार रहा है। समस्या सबकी है तो समाधान भी सबके लिए होना चाहिए, और इसलिए हमने सुशासन को सैचुरेशन से जोड़ा। सैचुरेशन यानी हर लाभार्थी जुड़े, कोई पात्र छूटे नहीं, कोई हकदार पीछे रहे नहीं, और किसी के हक पर कोई डाका न डाल सके।
1: The Prime Minister said India, once associated with discussions on policy paralysis, is now increasingly being discussed for its growing strength and resilience. He emphasized that over the past 12 years, the situation has changed completely. Mr. Modi said that earlier efforts were made to increase imports while India is setting new export records. He highlighted that the decade from 2015 to 2025 witnessed the highest sustained agricultural growth since independence, surpassing all previous records. India has condemned the string of attacks that have taken place in the Black Sea region in 2 days. Briefing media in New Delhi, External Affairs Ministry spokesperson Ranjit Jaiswal said that such attacks threaten commercial shipping and endangers the lives of seafaring communities. He added that a commercial vessel, MV Royed Mamadov, came under attack while it was plying in the Black Sea. There were 3 Indian nationals on board and all of them are safe, but one of them got injured and is receiving

0: சில நொடிகளில் ஹிந்தியிலும் ஆங்கிலத்திலும் செய்திகள். டெல்லியிலிருந்து அஞ்சலாகும்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே பிரசாந்த் குமார். प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सरकार प्रमुख के रूप में निरंतर 25 वर्षों की जनसेवा पूरी की। श्री मोदी ने नई दिल्ली के सरोजनी नगर स्थित श्री विनायक मंदिर का दौरा किया और वहां पूजा अर्चना की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत संकल्प सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि दूरदर्शी नीतियों और कड़ी मेहनत के माध्यम से भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने के अपने सपने को अवश्य पूरा करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये भारत के लिए बड़े लक्ष्य निर्धारित करने का समय है।
2: विकसित भारत का लक्ष्य, आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य, इकोनॉमी को टॉप 3 में लाने का लक्ष्य, गरीबी का नामो निशान मिटाने का लक्ष्य, ड्रग्स फ्री इंडिया बनाने का लक्ष्य, हमें ऐसा भारत बनाना है कि लक्ष्य ऐसे हो कि हर क्षेत्र में तिरंगा शान से लहराए।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर 17 सितंबर को गुजरात के वडनगर से शुरू हुई बाइक सेवा यात्रा कल काशी में संपन्न हो गई। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काशी में आयोजित समापन समारोह को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने पर प्रदेश की जनता की ओर से उन्हें बधाई दी। जापान, भूटान, फिलीपींस, बेल्जियम, नेपाल, नाइजीरिया और बोत्सवाना सहित कई देशों के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सरकार के प्रमुख के तौर पर लगातार 25 वर्ष की जनसेवा पूरी करने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार प्रमुख के रूप में अपने 25 वर्ष पूरे होने पर विश्व नेताओं से मिले शुभकामनाओं के लिए आभार व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस IMC के 10वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। इंडिया मोबाइल कांग्रेस का आयोजन 7 से 10 अक्टूबर तक किया जा रहा है। ये आयोजन सहयोग, निवेश और ज्ञान के आदान प्रदान के लिए एक वैश्विक मंच प्रदान करेगा। IMC 2026 का विषय सीमाओं के बिना विस्तार है। महिला और बाल विकास विभाग का 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन आज नई दिल्ली में आयोजित होगा। ये सम्मेलन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर आयोजित विभागीय सम्मेलनों की श्रृंखला का दूसरा सम्मेलन है। इसका उद्देश्य केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर तालमेल बनाना और महिला तथा बाल विकास से जुड़े कामों को और प्रभावी बनाना है। भारतीय वायुसेना का 94वां वायुसेना दिवस आज मनाया जाएगा। इस वर्ष वायुसेना दिवस की थीम है अचूक, अभेद्य और सटीक। वायुसेना दिवस की पूर्व संध्या पर आकाशवाणी के माध्यम से अपने संदेश में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने कहा कि भारतीय वायुसेना देश की सुरक्षा के लिए पूरी सतर्कता और दृढ़ संकल्प के साथ हमेशा तैयार है।

वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद की 57वीं बैठक आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में जीएसटी विवादों के समाधान और इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए नीतिगत सुधारों पर चर्चा होगी। इसका उद्देश्य अनुपालन में लगने वाले समय और लागत को कम करना है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बढ़ती महंगाई पर काबू पाने के लिए नीतिगत रेपो दर में 25 आधार अंकों की बढ़ोतरी की है। इसके साथ ही रेपो दर बढ़कर 5.5% हो गई है। मुंबई में द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए गवर्नर संजय मल्होत्रा ने ये जानकारी दी। भारत ने रूस में सेना के साथ काम कर रहे 69 भारतीय नागरिकों के बारे में रूसी अधिकारियों से जानकारी मांगी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कल नियमित प्रेस वार्ता में बताया कि भारत लगातार रूस से रूसी सेना में शामिल सभी भारतीय नागरिकों को जल्द रिहा करने का अनुरोध कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत के प्रयासों से अब तक 139 भारतीय नागरिकों को रूसी सेना से रिहा कराया जा चुका है। ओलंपिक पदक विजेता स्वप्निल कुसाले और सर्वजोत सिंह मिश्र के काहिरा में आज से शुरू होने वाले ISSF विश्व कप 2026 में 35 सदस्यीय भारतीय निशानेबाजी टीम की अगुवाई करेंगे। ये निशानेबाजी विश्व कप इस वर्ष का चौथा और अंतिम चरण है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: நினைவில் என்றவை நிகழ்ச்சியில் இதுவரை தர்மம் தலைகாக்கும், இதயத்தில் நீ, கற்பகம் ஆகிய படங்களிலிருந்து பாடல்கள் கேட்டீர்கள். சில நொடிகளில் ஹிந்தியிலும் ஆங்கிலத்திலும் செய்திகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस IMC के 10वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। इंडिया मोबाइल कांग्रेस का आयोजन इस माह 7 से 10 अक्टूबर तक किया जाएगा। ये आयोजन सहयोग, निवेश और ज्ञान के आदान प्रदान के लिए एक वैश्विक मंच प्रदान करेगा। IMC 2026 का विषय सीमाओं के बिना विस्तार है। इस आयोजन में 100 से अधिक देशों के 1.5 लाख से अधिक प्रतिभागी शामिल होंगे, जिनमें 500 से अधिक भागीदार और प्रदर्शक, 600 स्टार्टअप और 900 विचारकों की भागीदारी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सरकार प्रमुख के रूप में निरंतर 25 वर्षों की जनसेवा पूरी की। श्री मोदी ने नई दिल्ली के सरोजनी नगर स्थित श्री विनायक मंदिर का दौरा किया और वहां पूजा अर्चना की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत संकल्प सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि दूरदर्शी नीतियों और कड़ी मेहनत के माध्यम से भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने के अपने सपने को अवश्य पूरा करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये भारत के लिए बड़े लक्ष्य निर्धारित करने का समय है।
2: विकसित भारत का लक्ष्य, आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य, इकोनॉमी को टॉप 3 में लाने का लक्ष्य, गरीबी का नामो निशान मिटाने का लक्ष्य, ड्रग्स फ्री इंडिया बनाने का लक्ष्य। हमें ऐसा भारत बनाना है कि लक्ष्य ऐसे हो कि हर क्षेत्र में तिरंगा शान से लहराए।
1: जापान, भूटान, फिलीपींस, बेल्जियम, नेपाल, नाइजीरिया और बोत्सवाना सहित कई देशों के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सरकार के प्रमुख के तौर पर लगातार 25 वर्ष की जनसेवा पूरी करने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार प्रमुख के रूप में अपने 25 वर्ष पूरे होने पर विश्व नेताओं से मिली शुभकामनाओं के लिए आभार व्यक्त किया है। भारतीय वायुसेना का 94वां वायुसेना दिवस आज मनाया जाएगा। इस वर्ष वायुसेना दिवस की थीम है अचूक, अभेद्य और सटीक। वायुसेना दिवस की पूर्व संध्या पर आकाशवाणी के माध्यम से अपने संदेश में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने कहा कि भारतीय वायुसेना देश की सुरक्षा के लिए पूरी सतर्कता और दृढ़ संकल्प के साथ हमेशा तैयार है। वस्तु और सेवा कर GST परिषद की 57वीं बैठक आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में GST विवादों के समाधान और इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए नीतिगत सुधारों पर चर्चा होगी। इसका उद्देश्य अनुपालन में लगने वाले समय और लागत को कम करना है। महिला और बाल विकास विभाग का 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन आज नई दिल्ली में आयोजित होगा। ये सम्मेलन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर आयोजित विभागीय सम्मेलनों की श्रृंखला का दूसरा सम्मेलन है। इसका उद्देश्य केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर तालमेल बनाना और महिला तथा बाल विकास से जुड़े कामों को और प्रभावी बनाना है। दिल्ली में दृष्टि परियोजना के अंतर्गत आधुनिक सर्वे और मैपिंग सिस्टम बनाया जाएगा। केंद्र सरकार ने इस परियोजना के लिए 65 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इसके तहत दिल्ली के सभी 13 जिलों में PM उदय सेल बनाए जाएंगे। परियोजना के लिए 52 करोड़ रुपए केंद्र सरकार और 13 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार देगी। इस परियोजना से संपत्तियों का सर्वे, नक्शा तैयार करने और दस्तावेजों का काम तेजी से होगा। इससे लोगों को संपत्ति का मालिकाना हक लेने और संपत्ति के हस्तांतरण में भी आसानी होगी। ISSF निशानेबाजी विश्व कप आज से मिस्र के काहिरा में शुरू होगी। 35 सदस्यीय भारतीय टीम का नेतृत्व ओलंपिक पदक विजेता स्वप्निल कुसाले और सर्वजोत सिंह करेंगे। ये निशानेबाजी विश्व कप इस वर्ष का 4था और अंतिम चरण है। एशियाई पैरा खेलों के उद्घाटन समारोह में प्रमोद भगत और भाविना पटेल भारतीय दल के ध्वजवाहक होंगे। ये खेल 18

0: में इंडिया मोबाइल कांग्रेस आईएमसी के 10वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। इंडिया मोबाइल कांग्रेस का आयोजन इस माह 7 से 10 अक्टूबर तक किया जा रहा है। ये आयोजन सहयोग, निवेश और ज्ञान के आदान प्रदान के लिए एक वैश्विक मंच प्रदान करेगा। आईएमसी 2026 का विषय सीमाओं के बिना विस्तार है। इस आयोजन में 100 से अधिक देशों के 1.5 लाख से अधिक प्रतिभागी शामिल होंगे, जिनमें 500 से अधिक भागीदार और प्रदर्शक, 600 स्टार्टअप तथा 900 विचारकों की भागीदारी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सरकार प्रमुख के रूप में निरंतर 25 वर्षों की जनसेवा पूरी की। श्री मोदी ने नई दिल्ली के सरोजनी नगर स्थित श्री विनायक मंदिर का दौरा किया और वहां पूजा अर्चना की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत संकल्प सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि दूरदर्शी नीतियों और कड़ी मेहनत के माध्यम से भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने के सपने को अवश्य पूरा करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये भारत के लिए बड़े लक्ष्य निर्धारित करने का समय है।
1: विकसित भारत का लक्ष्य, आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य, इकोनॉमी को टॉप 3 में लाने का लक्ष्य, गरीबी का नामो निशान मिटाने का लक्ष्य, ड्रग्स फ्री इंडिया बनाने का लक्ष्य। हमें ऐसा भारत बनाना है कि लक्ष्य ऐसे हो कि हर क्षेत्र में तिरंगा शान से लहराए।
0: जापान, भूटान, फिलीपींस, बेल्जियम, नेपाल, नाइजीरिया और बोत्सवाना सहित कई देशों के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सरकार के प्रमुख के तौर पर लगातार 25 वर्ष की जनसेवा पूरी करने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार प्रमुख के रूप में अपने 25 वर्ष पूरे होने पर विश्व नेताओं से मिली शुभकामनाओं के लिए आभार व्यक्त किया है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कल आइवरी कोस्ट गणराज्य की विदेश राज्य मंत्री नियाले काबा से मुलाकात की। अबिजान में हुई बैठक में दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। इस दौरान व्यापार, निवेश, बुनियादी ढांचे, कृषि, स्वास्थ्य और लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। डॉक्टर जयशंकर 3 देशों की अफ्रीका यात्रा पर हैं। महिला और बाल विकास विभाग का 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन आज नई दिल्ली में आयोजित होगा। ये सम्मेलन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर आयोजित विभागीय सम्मेलनों की श्रृंखला का दूसरा सम्मेलन है। इसका उद्देश्य केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर तालमेल बनाना और महिला तथा बाल विकास से जुड़े कामों को और प्रभावी बनाना है। भारतीय वायुसेना का 94वां वायुसेना दिवस आज मनाया जाएगा। इस वर्ष वायुसेना दिवस की थीम है अचूक, अभेद्य और सटीक। वायुसेना दिवस की पूर्व संध्या पर आकाशवाणी के माध्यम से अपने संदेश में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने कहा कि इस वर्ष अभ्यास वायु शक्ति, विभिन्न द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास, ड्रोनाथॉन और बहुपक्षीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति जैसे महत्वपूर्ण आयोजनों के माध्यम से वायुसेना अपने युद्ध तैयारी को लगातार परख रही है। वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद की 57वीं बैठक आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में जीएसटी विवादों के समाधान और इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए नीतिगत सुधारों पर चर्चा होगी। इसका उद्देश्य अनुपालन में लगने वाले समय और लागत को कम करना है। ओलंपिक पदक विजेता स्वप्निल कुसाले और सरबजोत सिंह मिश्र के काहिरा में आज से शुरू होने वाले आईएसएसएफ विश्व कप 2026 में 35 सदस्यीय भारतीय निशानेबाजी टीम की अगुवाई करेंगे। ये निशानेबाजी विश्व कप इस वर्ष का चौथा और अंतिम चरण है। मौसम विभाग ने आज केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान लगाया है। छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और पंजाब में अगले 2-3 दिनों तक आंधी तूफान के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Ashish Abraham. PM Modi completed 25 years of continuous public service as head of

0: எஃப்எம் கோல்டில் இனி தொடர்வது செய்தி அறிக்கைகள் டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷவாணி சமாச்சார் கே சாத் மே பிரசாந்த் குமார். प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस आईएमसी के 10वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। इंडिया मोबाइल कांग्रेस का आयोजन इस माह 7 से 10 अक्टूबर तक किया जा रहा है। ये आयोजन सहयोग, निवेश और ज्ञान के आदान प्रदान के लिए एक वैश्विक मंच प्रदान करेगा। आईएमसी 2026 का विषय सीमाओं के बिना विस्तार है। इस आयोजन में 100 से अधिक देशों के 1.5 लाख से अधिक प्रतिभागी शामिल होंगे, जिनमें 500 से अधिक भागीदार तथा प्रदर्शक, 600 स्टार्टअप और 900 विचारकों की भागीदारी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सरकार प्रमुख के रूप में निरंतर 25 वर्षों की जनसेवा पूरी की। श्री मोदी ने नई दिल्ली के सरोजनी नगर स्थित श्री विनायक मंदिर का दौरा किया और वहां पूजा अर्चना की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री

0: नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत संकल्प सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि दूरदर्शी नीतियों और कड़ी मेहनत के माध्यम से भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने के अपने सपने को अवश्य पूरा करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये भारत के लिए बड़े लक्ष्य निर्धारित करने का समय है।
1: विकसित भारत का लक्ष्य, आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य, इकोनॉमी को टॉप 3 में लाने का लक्ष्य, गरीबी का नामो निशान मिटाने का लक्ष्य, ड्रग्स फ्री इंडिया बनाने का लक्ष्य, हमें ऐसा भारत बनाना है कि लक्ष्य ऐसे हो कि हर क्षेत्र में तिरंगा शान से लहराए।
0: जापान, भूटान, फिलीपींस, बेल्जियम, नेपाल, नाइजीरिया और बोत्सवाना सहित कई देशों के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सरकार के प्रमुख के तौर पर लगातार 25 वर्ष की जनसेवा पूरी करने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार प्रमुख के रूप में अपने 25 वर्ष पूरे होने पर विश्व नेताओं से मिली शुभकामनाओं के लिए आभार व्यक्त किया है। महिला और बाल विकास विभाग का 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन आज नई दिल्ली में आयोजित होगा। यह सम्मेलन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर आयोजित विभागीय सम्मेलनों की श्रृंखला का दूसरा सम्मेलन है। इसका उद्देश्य केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर तालमेल बनाना और महिला तथा बाल विकास से जुड़े कामों को और प्रभावी बनाना है। भारतीय वायुसेना का 94वां वायुसेना दिवस आज मनाया जाएगा। इस वर्ष वायुसेना दिवस की थीम है अचूक, अभेद्य और सटीक। वायुसेना दिवस की पूर्व संध्या पर आकाशवाणी के माध्यम से अपने संदेश में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने कहा कि इस वर्ष अभ्यास वायु शक्ति, विभिन्न द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास, ड्रोनाथॉन और बहुपक्षीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति जैसे महत्वपूर्ण आयोजनों के माध्यम से वायुसेना अपनी युद्ध तैयारी को लगातार परख रही है। वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद की 57वीं बैठक आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में जीएसटी विवादों के समाधान और इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए नीतिगत सुधारों पर चर्चा होगी। इसका उद्देश्य अनुपालन में लगने वाले समय और लागत को कम करना है। दिल्ली कस्टम्स ने कल करीब 515 करोड़ रुपए की कीमत के 165 किलोग्राम जब्त मादक पदार्थों को नष्ट कर दिया। दिल्ली कस्टम्स की उच्च स्तरीय मादक पदार्थ निपटान समिति ने निर्धारित कानूनी प्रक्रिया और सुरक्षा उपायों के तहत इन मादक पदार्थों को नष्ट किया। ये कार्रवाई इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ लगातार चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत की गई है। ISSF निशानेबाजी विश्व कप आज से मिस्र के काहिरा में शुरू होगी। 35 सदस्यीय भारतीय टीम का नेतृत्व ओलंपिक पदक विजेता स्वप्निल कुसाले और सरबजोत सिंह करेंगे। ये निशानेबाजी विश्व कप इस वर्ष का चौथा और अंतिम चरण है। एशियाई पैरा खेलों के उद्घाटन समारोह में प्रमोद भगत और भाविना पटेल भारतीय दल के ध्वजवाहक होंगे। ये खेल 18 से 24 अक्टूबर तक जापान के आईची नागोया में आयोजित होंगे। पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद ने 2014 से 2023 के बीच एशियाई पैरा खेलों में 2 स्वर्ण और 4 कांस्य सहित 6 पदक जीते हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Ashish P. Abraham. Prime Minister Narendra Modi completed 25 years of continuous public service as head of the government. Mr. Modi visited Sri Vinayaka Temple at Sarojini Nagar in New Delhi and offered prayers there. On the occasion, the PM addressed the Viksit Bharat Sankalp Sabha in New Delhi. He said that India will definitely fulfill its dream of becoming a developed nation by 2047 through visionary policies and hard work. Addressing the Viksit Bharat Sankalp Sabha in New Delhi, Mr. Modi stated that present government's policies focus on solutions for all citizens.
1: Sabka saath, sabka vikas, yahi mere liye sushasan ka aadhar raha hai. Samasya sabki hai. तो समाधान भी सबके लिए होना चाहिए और इसलिए हमने सुशासन को saturated.

0: இதுவரை பொங்கும் மங்கலம் நிகழ்ச்சியில் திரியடையார் ஏ டி பாலமுருகன் அவர்களின் நாகஸ்வர இசை கேட்டீர்கள். கொங்கம்பட்டு ஏ வி முருகையன் அவர்கள் தவில்.
1: எஃப்எம் கோல்டில் இனி தொடர்வது செய்தி அறிக்கைகள். டெல்லி அஞ்சல்.
2: நமஸ்கார். ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே முகேஷ் குமார் பல். प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस आईएमसी के 10वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। इंडिया मोबाइल कांग्रेस का आयोजन इस माह की 7 से 10 तारीख तक किया जा रहा है। यह आयोजन सहयोग, निवेश और ज्ञान के आदान प्रदान के लिए एक वैश्विक मंच प्रदान करेगा। इस सम्मेलन का विषय सीमाओं के बिना विस्तार है। इस आयोजन में 100 से अधिक देशों के 1.5 लाख से अधिक प्रतिभागी शामिल होंगे, जिनमें 500 से अधिक भागीदार तथा प्रदर्शक, 600 स्टार्टअप और 900 विचारकों की भागीदारी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सरकार प्रमुख के रूप में निरंतर 25 वर्षों की जनसेवा पूरी की। श्री मोदी ने नई दिल्ली के सरोजिनी नगर स्थित श्री विनायक मंदिर में पूजा अर्चना की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत संकल्प सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि दूरदर्शी नीतियों और कड़ी मेहनत के माध्यम से भारत वर्ष 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने के अपने सपने को अवश्य पूरा करेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये भारत के लिए बड़े लक्ष्य निर्धारित करने का समय है।
3: विकसित भारत का लक्ष्य, आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य, इकोनॉमी को टॉप 3 में लाने का लक्ष्य, गरीबी का नामो निशान मिटाने का लक्ष्य, ड्रग्स फ्री इंडिया बनाने का लक्ष्य, हमें ऐसा भारत बनाना है कि लक्ष्य ऐसे हो कि हर क्षेत्र में तिरंगा शान से लहराए।
2: जापान

0: भूटान, फिलीपींस, बेल्जियम, नेपाल, नाइजीरिया और बोत्सवाना सहित कई देशों के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सरकार के प्रमुख के तौर पर लगातार 25 वर्ष की जनसेवा पूरी करने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसके लिए सभी का आभार व्यक्त किया है। वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद की 57वीं बैठक आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में जीएसटी विवादों के समाधान और इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए नीतिगत सुधारों पर चर्चा होगी। इसका उद्देश्य अनुपालन में लगने वाले समय और लागत को कम करना है। महिला और बाल विकास विभाग का 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन आज नई दिल्ली में आयोजित होगा। ये सम्मेलन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर आयोजित विभागीय सम्मेलनों की श्रृंखला का दूसरा सम्मेलन है। इसका उद्देश्य केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर तालमेल बनाना और महिला तथा बाल विकास से जुड़े कामों को और प्रभावी बनाना है। वायुसेना का 94वां स्थापना दिवस आज मनाया जाएगा। इस वर्ष वायुसेना दिवस की थीम है अचूक, अभेद्य और सटीक। वायुसेना दिवस की पूर्व संध्या पर आकाशवाणी के माध्यम से अपने संदेश में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने कहा कि इस वर्ष अभ्यास वायुशक्ति, विभिन्न द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास, ड्रोनोथॉन और बहुपक्षीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति जैसे महत्वपूर्ण आयोजनों के माध्यम से वायुसेना अपनी युद्ध तैयारी को लगातार परख रही है। दिल्ली कस्टम्स ने कल करीब 515 करोड़ रुपए की कीमत के 165 किलो जब्त मादक पदार्थों को नष्ट किया। दिल्ली कस्टम्स की उच्च स्तरीय मादक पदार्थ निपटान समिति ने निर्धारित कानूनी प्रक्रिया और सुरक्षा उपायों के अंतर्गत इन मादक पदार्थों को नष्ट किया। ये कार्रवाई इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ लगातार चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत की गई है। ओलंपिक पदक विजेता स्वप्निल कुसाले और सरबजोत सिंह मिस्र के काहिरा में आज से शुरू होने वाले ISSF विश्व कप 2026 में 35 सदस्यीय भारतीय निशानेबाजी टीम की अगुवाई करेंगे। ये निशानेबाजी विश्व कप इस वर्ष का चौथा और अंतिम चरण है। इसके अलावा एशियाई पैरा खेलों के उद्घाटन समारोह में प्रमोद भगत और भाविना पटेल भारतीय दल के ध्वजवाहक होंगे। ये खेल 18 से 24 अक्टूबर तक जापान के आईजी नागोया में आयोजित होंगे। मौसम विभाग ने आज केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकाल, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इधर हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और आसपास के इलाकों में आंधी तूफान की स्थिति बनी रह सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by Ashish P. Abraham. Prime Minister Narendra Modi will inaugurate 10th edition of India Mobile Congress at Yashobhoomi in New Delhi today. The 4 days event, which began yesterday, is being jointly organized by the Department of Telecommunications and the Cellular Operators Association of India. It will showcase India's remarkable progress in telecommunications, digital connectivity and technological innovation while providing a global platform for collaboration, investment and knowledge exchange. The theme of IMC 2026 is Scale Without Boundaries, reflecting India's growing capabilities in digital innovation, next-generation connectivity and technology-led growth. PM Modi completed 25 years of continuous public service as head of the government. On the occasion, the PM addressed the Viksit Bharat Sankalp Sabha in New Delhi. He said that India will definitely fulfill its dream of becoming a developed nation by 2047 through visionary policies and hard work. Addressing the Viksit Bharat Sankalp Sabha in New Delhi, Mr. Modi said that present government's policy focuses on solutions for all citizens.
2: Sabka saath, sabka vikas. यही मेरे लिए सुशासन का आधार रहा है। समस्या सबकी है तो समाधान भी सबके लिए होना चाहिए, और इसलिए हमने सुशासन को सैचुरेशन से जोड़ा। सैचुरेशन यानी हर लाभार्थी जुड़े, कोई पात्र छूटे नहीं, कोई हकदार पीछे रहे नहीं, और किसी के हक पर